इलेगल आउट ऑफ डाउट सक्स हो गया मैं आपने लाउ चाउ के नैनो नवु मिट्टी वाले है पैनिक पटान सिले ले रिया ने आप लोगों ने ठमाने की वाले मिट अम्मा के चंग म्यूनिट संग ना तमालू तलू तुम गसुलाओ मिगिची